0: हेलो
1: साइली, के छ तिम्रो हालखबर?
0: ठिक छु। हजुरलाई
1: मलाई साह्रै तिम्रो याद आउँछ साइली।